ख्या नुदन्न मीहुं विस वे फोतुं विस मुस्तहील उम्मीद तके नूनी एवरेन नकन नुफेने अधि ही तके कुरा खंगा नूनी एवरेन नुए।

ख्या नुदन्न मीहुं विस वे फोतुं विस मुस्तहील उम्मीद तके नूनी एवरें नकन नुफेने अधि ही तके कुरा खमगा नूनी एवरें नुए।

हम अखश्वरुन थिमन रसकलांगे फाड़ुवे बयां विगुंवा आयत्तके खलेग फान बावाले वीमे फासकुन नूं बयकु एकक्का फिरन नुआने थे।

बिल तो दक्कन फसे हो गए मियोती फाही पे ऐप बिल तक अंगारा जुमला अदु फाही पे ऐप ट्रांसफर कोल्ला देंगा महुरिया बिल तक फैसा दक्का निम्मा लम्बी फोन फेंग गैस अदि मीडिया नेट बिलकस देखके ने रीलोड रास्टस नूनी डेटा पेक्वस नेगे नेंगे मी हम डिजिटल वॉलेट देने मस देबावेर बिल नु देखी गें लारिय वीनुए नेंगी गें उलेक नुजे ने हुरिया डिजिटल पेमेंट तक फाही पे मा फाही